సో ఇస్ ఎక్స్పీరియన్స్ నువ్వు జదో కబీర్ జీ నే ఎక్స్పీరియన్స్ కీతా తో ఓ భీ బడా బహుత్ హైరాన్ హోయే కబీర్ జీ హైరాన్ హోకే శబ్ద లిఖదే హన్ ना ए मानस असी कहने हां आई एम ए ह्यूमन बीइंग मैं मानस हां बट कबीर सेज ना ए मानस ये ते मानस भी नहीं है ह्यूमन बीइंग ते सी एस फॉर्म नु आखदे हां ना पर जिस फाउंडेशन दे उते ए फॉर्म खड़ी है एग्जिस्ट करदी है वो जो एनर्जी है जा लाइफ करंट है विच इज मेकिंग इट हैपन कहते वो तो मानस नहीं ना है वो मानस नहीं है वो ह्यूमन नहीं है नीदर इट्स मेल नॉर इज फीमेल ना ए मानस आफ्टर रियलाइजिंग द ट्रू सेल्फ कबीर सेज ना ए मानस ना ए देव ना ए कोई देवी देवता है ना ए जती कहावे से हो कई बन जाते हैं जती अपने आप से लेबल लगा लेंगे कि मैं जती हाँ कबीर जी कहते ए जती भी नहीं एक गृहस्थी भी नहीं है जती भी नहीं ना ए जती कहावे से हो ना ए जोगी ना औधूता ना इस माए ना कहूं पूता मेरे ट्रू सेल्फ दी ना कोई मां है ना कोई पुत्र है ना इस माए ना कहूं पूता जो क्वेश्चन में तो पूछा गया है कबीर जी हैज ऑलरेडी रेज्ड दैट क्वेश्चन सवाल पूछा है Where does it exist within the body? Kabir ji, aap is gal layi, is mystery layi, sawal uthande han bani de vich, ya mandir mein kaun basai? Ya mandir mein kaun basai? Is mandir ch kaun rehnda hai? As far as ke kithe rehnda hai, bani kehndi hai, taaya andar jag jeevan data vase. सारी दी सारी काया दा कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं जिथे वो नहीं बट उन लोकलाइज नहीं किया जा सकता किसे जगह के वो इत्थे ही है क्योंकि फिर तो उसने उसी लोकलाइज कर दिता कि वो इत्थे है वो तो इत्थे भी है और उना गैलेक्सीज भी है जिन्हां तक इंसान दी हाले अप्रोच भी नहीं हुई फिर उसनों सी लोकलाइज के में कर दी है वो कोई लोकलाइज करने वाली चीज नहीं है जो सी कह रही है वो ऐस जगह चलेंदा है हां उसनों सुरती अनुभव कर दी है लेकिन है वो बॉडी दे पूरे शरीर दे एक एक जर्रे जर्रे एक एक सेल दे विच समाया हुआ है कबीर साहब आप वंडर करते हैं या मंदिर में कौन बसाए या मंदिर में कौन बसाए तंग का अंत ना को पाई कहते ना एक गृही ना उदासी कहते मेरा रियल सेल्फ ना गृहस्थी है ना उदासी है ना ए गृही ना उदासी ना ए राज ना भीख मंगासी ना ए राजा है ते ना ए भीख मंगा बैगर है ना इस पिंड ना रख तू राती कहते इन किमें कह सकते हो कि आई एम ह्यूमन फॉर्म आई एम ह्यूमन बीइंग सम पीपल से दैट If we ask, what are you? You will say, I am a human being. But look at the Gurbani's statement. Oh, kende, na is pind, na is da ko shreer hai. Neither it has a body, nor it has blood. Na is da ko pind hai, shreer hai, na is de andar ko blood hai. Na is pind na raktu rati, na e brahman na e khati. Na e brahman na e khatri hai. Is di ko zaat nahi hai. असी अपने आप ते लेबल्स लगाए हन असी अपने आप नु आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं आ हां मैं आ हां मैं आ हां दैट इज ऑल फॉल्स दैट इज ऑल अनट्रू इल्यूजन पर ओ कहंदे हन एदी कोई भी जात नहीं है क्योंकि ओ एक ही है सबना दे विच है और हर जगह दे विच है ते उस दी जात दा उसे नु ही पता है उस दी जात की है और साडी भी सबना दी जात ओही है जो उस दी जात है क्योंकि ओही साडे विच है ना ए ब्राह्मण ना ए खाती ना ए तपा कहावे शेख
ना ए कोई तपा है, ना ए शेख है, ना ए जीवे ना मरता देख, ना ए जींदा है ते ना ही इसनु किसी ने मरता देखा है, वो आप ही जानता फिर वो की है, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, वो मिस्ट्री ऑफ द मिस्ट्रीज है, उस मिस्ट्री को जान नहीं सकते। कहते ना ए जीवे ना मरता देख, इस मरते को जे कोई रोवे, कहते जो कोई बंदा मर जाता है ना तो वह सोचते हैं कि यह मर गया, कहते उन्होंने नहीं पता कि जो चीज पहला जिंदा सी वह हूं भी उतना ही जिंदा है, सिर्फ जड़ा मकान सी वह टह गया, पर मकान दे विच रहन वाला होर मकान चले जाएगा, जो होर मकान चले जाएगा, मकान बदलिया जाएगा, लेकिन मकान जो जिंदा सी कहते रो क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो, तो हूं भी जिंदा है उतना ही, किसी होर मकान चोएगा। ना ए जीवे ना मरता देख, इस मरते को जे कोई रोवे, जो रोवे अपनी पत खोवे, कहते वो अपनी पत खोदा है, रोई जा रहा है कि वह मर गया पर वो जिंदा है, वो तो उसे तो हासो ही नहीं होनी है, जो रोवे सोई पत खोवे। अखीर कबीर साहब कहते गुर प्रसाद मैं डगरो पाया, फिर गुरु की गल आ जाती है कि गुरु की कृपा दे नाल ए राज ए रस्ता मैनू प्राप्त होया, तो गुरु नू पता है मैं की हां, और गुरु ही ए सीक्रेट रिवील कर सकता है, और गुरु ही इस सीक्रेट नू रिवील करन दे दरम्यान जड़े जड़े ऑब्स्टैकल्स हन, जड़िया मुश्किलातां हन, उन्हां नू टैकल कर सकता है। कहिंदे हन गुर प्रसाद मैं डगरो पाया, गुरु की कृपा दे नाल कहिंदे ए अपना रियल सैल्फ रियलाइज करन तो बाद की हो गया, जन्म मरण दो मिटवाए, जन्म मरण मेरे दोनों खत्म हो गए, क्योंकि रियल सेल्फ ना जमदा है ना मरदा है। जितनी देर तक मैं अपने आप नूं शरीर समझदा हां, शरीर दियां इच्छावां हन, वासनावां हन, तृष्णावां हन, मोह ममता है, उतनी देर तक मैं आंदा हां और जाना हां। जदों रियल सेल्फ असल आपा चीनिया गया, असल आपा पहचानिया गया, कहिंदे जन्म मरण दो मिटवाया, फौरन कहिंदे मेरा जन्म मरण खत्म हो गया। तो अखीर च आखदे हन कहो कबीर ए राम की अंश, ए उस प्रभु दी ही अंश है, जिस तरह समुद्र दे विच्चों निकालिया होया एक पानी दा ड्रॉप समुद्र दा ही हिस्सा है, इसे तरह ए साडे शरीरां दे विच अकाल पुरख वाहिगुरु दी सुपर कॉन्शियसनेस दा एक ड्रॉप है, लेकिन जिसनू इस शरीर दे विच आन करके एक वहम हो गया कि मैं आ हां, जदों इस वहम नू तोड़ दिता जाएगा उदों ए जो है जिस दा है उही बन जाएगा, उसे दियां तमाम क्वालिटीज जो हैं वो इस दे विच आके मौजूद हो जाएंगियां। आज दे कीर्तन दे विच आप जी दी सेवा च ए अर्ज कीती है, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी का गुरपुरब मनाना सी, ते जिस रेफ जिस लड़ी च कीर्तन चल रहा सी उसे लड़ी च ही इसनू मैं पेश करना चाहता सी कि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपना सैल्फ रियल सैल्फ डिस्कवर करन तो बाद अपनी बाणी आप उचारी है, उस बाणी दे विचों ये पता लगता है कि जो अपना रियल सेल्फ डिस्कवर कर लेंदा है ना वो मर सकता है, ना उसनु पेन दिती जा सकती है, ना उसनु खत्म कीता जा सकता है, ना उसकी कोई जात है, ना वो आउण जाण वाली चीज है। ओ गुरु अर्जन देव जी महाराज अपनी अकम्पलिशमेंट नु कह रहे हैं कि मैं धन भागी हां कि गुरु ने मेरे उत्ते कृपा कीती है, मेनू मेरा भरम दूर कर दिता है और मेनू दस दिता है कि मैं की हां। और गुरबाणी का मुख आशा टारगेट सिर्फ यही है कि असा भी अपनी लाइफ दे विच विच वाहिगुरु कृपा करे ये जानना है कि असी कौन। अज आप जी गुरु अर्जन देव जी का गुरपुरब मना रहे हो तो गुरु अर्जन देव जी का एक सुनेहा लैके जाओ, गुरु अर्जन देव जी सानू सारियां नू एक साडे अंदर क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, क्वेश्चन उठा रहे हैं, वो क्वेश्चन ये है सुनो रे तू कौन कहां ते आयो, इंसान सुन तू कौन है, तेन पता है कितों आया है, तेन पता है तेन कुछ नहीं पता, इस क्वेश्चन नू इतना बधाना चाहिदा है अंदर, दिन रात इस उते मेडिटेट करना चाहिदा है, दिन दे विच कितनी दफा इस थॉट नू लेना चाहिदा है कि मैं कौन हा, मैं कौन हा। जो ये सवाल रेज करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, पहला तो सवाल परिपक्व होना चाहिदा है,
ਜਦ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਪੱਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਰਥਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰਾ ਆਹ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਆਹ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਆਹ ਹੈ, ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਕਲੀਫ ਬਣ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਗਿਆਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜਬ ਹਮ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਓ ਮਨ ਅਰਪੀ ਸਭ ਤਨ ਅਰਪੀ, ਅਰਪੀ ਸਭ ਦੇਸਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਆਪਣਾ ਮਨ, ਆਪਣਾ ਤਨ, ਆਪਣਾ ਧਨ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਗੁਰਚਰਨ ਲਾਗ ਹਮ ਬਿਨਤਾ ਪੁੱਛਤ ਕਹਿ ਜੀ ਉਪਾਇਆ। ਇਹ ਜੀ ਕਿਉਂ ਉਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ, ਕਵਨ ਕਾਜ ਜਗ ਉਪਜੇ ਬਿਨ ਸੇ ਕਹੋ ਮੋਹੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹ ਗੁਰਦੇਵ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਢੰਗ ਹਨ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇ ਕੀਰਤਨਾਂ ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰਖ ਹੋਏ ਭਰਮ ਪੰਗਾ, ਹਮ ਓਏ ਮਿਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰੰਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਦਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਕਿ ਹਾਉ ਕੈਨ ਆਈ ਬੀ ਗੋਡ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਿਨਫੁਲ ਹਾਂ, ਕਰਮੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਰੀਅਲ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਉਨਕਾ ਉਸ ਲੇਪ ਨਾ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਤਹਾਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪਾਪ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਾ ਪੁੰਨ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਤਨੇ ਤਸੀਹੇ ਤਾਂ ਸਹਾਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬੁਲੰਦ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤਕਲੀਫ਼ ਚ ਉਹ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰੀ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖੀ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਨੰਦ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗ੍ਰਹੀ ਸੋ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਣਿਆ, ਉਹੀ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹੀ ਉਦਾਸੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਡੇਰੇ ਡੂਰੇ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਲਾਈਫ, ਇਹ ਫੋਰਮ, ਇਹ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਓ, ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਂ।

मैं तेरे दर्दा भिखारी हां मंगता हां। आरता मैंने मंगता जिथे आरता का अर्थ दुखी है उथे इसका अर्थ मंगता भी है। भगत तन्ना जी शब्द आरंभ करते हुए कहते ने गोपाल गोमन पृथ्वी पाल मैंने पालना करने वाला सर्वशक्तिवान।

अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है वाहेगुरु। अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबा है अगा है अमान है।

0: भक्त बैठे घर आया, ब्रह्मे कथ कदम अंत न पाया। राम भक्त बैठे घर आया, राम भक्त बैठे घर आया।
1: भजन आउंदा है, एक संत वैष्णव कबीर जी दे घर आ गया। कबीर नूं चाह चढ़ गया, मत्था टेकिया, परकर्मा कीतियां। ये पुरानी सभ्यता सी, सिख नूं सिख मिल पवे परकर्मा करके ते मत्था टेकदा सी, मैनूं गुरु मिल पिया। नमस्कार कीती, लोई नूं आवाज मारी, लोईए आ साडे भाग जाग पै घर संत आ गया। उठिए किधे रहिंदे सी, आ गया प्रभु दा प्यारा। बैठ गया, इधर वेख इधर वेख, उन्हें कुछ वेख्या, ताणी वेखी, जुलाया वाला सारा समान वेख्या। ये वैष्णव सी, ये छूत छात नूं मन्नदा सी, विष्णु दा उपाशक सी। एवं वेख के कह लगा, वे तू सो जुलाहा है कबीरा, तू जुलाहा है। कबीर कहता, हाँ जी, होछी मत मेरी, मैं जात जुलाहा, हर का नाम लियो मैं लाहा। मत मेरी होछी है, अकल मैनू है नहीं, जात भी मेरी जुलाहा दे कर मेरा जन्म होया। पर मेरे ते परमेश्वर ने कृपा की थी, मैं नाम दा लहा खट दें, सब आखो सतना। कबीर जी कहन लगे, की शकोगे? वो कहिंदा, ओ कबीरा, मैं तो तेरे घर आण के पछताउना भी मैं आ क्यों गया। अठाठ तीर्थां दी यात्रा कीती सी, सारा भजन सारी यात्रा एवें ही गई तेरे घर आण के। तू मैनूं खाण नूं पुछदा, मैं ते पछताउना, रात पै गई आ, जा किते सकदा नहीं, मुड़ के फिर मैनूं यात्रा करनी पऊगी। कबीर जी कहण लगे, संत जी, हुण तुसीं आत गए ही हो, पिटे ते गए ही हो, तुहाडा सारा कर्म धर्म सारा नष्ट तो हो ही गया, मुड़ के यात्रा कर लियो, होर टुबा ला लियो। पर जे तुसी ना कुछ खादा तो असी भी तुहाडे सिर चढ़ के कुछ नहीं खाना, ये संताप भी तुहानू लगेगा। शास्त्र पढ़ लो, हुण जां कोई शर्त रख दियो, असी पूरी ना कर सकिए। ओह कहण लगा, भी कबीरा, मैं हैगा विष्णु दा उपाशक, जे तेरे घर विष्णु मैं रोटी खांदियां वेख लवां ना, तो मैं भी रोटी खा लूंगा। कबीर जी कहण लगे, संत जी, इन्नी देर ला दित्ती, तुसीं आउंदे ही कह दिंदे, अद्धा कम मुक्या होना सी। इन्नी देर ला दित्ती, हुण इह है नाम जपण वाला, उधर है दिखावा, सब आखो सतनाम। कबीर जी कहण लगे, लोईए खिचड़ी तैयार कर। कबीर दा जिहड़ा खाणा सी ना मन पसंद, वो खिचड़ी सी, ते गुरु अमरदास महाराज दा जिहड़ा मन पसंद खाणा सी ओगरा सी। ओगरा लूण तो बिना, मिठे तो बिना, जिवें दलिया हुंदा इस तरह। लोईए इन्हां महापुरखां दी कृपा दा सदका अज साडे घर विष्णु भगवान आउणगे, खिचड़ी तैयार करो। खिचड़ी तैयार हो गई, इन अरदास कीती, हे निरंकार, हे परमेश्वर, हे सर्व शक्तिमान, मैं तेन खेचण नहीं सी देना चाहुंदा, तू ते जर्रे जर्रे ज, कोई ऐसी जगह नहीं जिथे तू नहीं, तू वसदा है पूरी शक्ति च वसदा है। पर साध खड़े पै गए, मैं तेन खेचण नहीं सी देनी चाहुंदा, ये कहिंदा रोटी तां खानी, तू आवे तो तू कृपा कर, तू जर्रे जर्रे च, सारे रूप तेरे ने। अज तू इस साध की खातर, संत की खातर, ये वैष्णव संत है, तू विष्णु भगवान हो के आ। अजे नमस्कार की, सिर चक्या तो विष्णु बैठे, ये गल गलत नहीं। बाणी का वचन है, अनक रूप खिन माहे कुदरत धार दा, ये बाणी का वचन है। वो बेअंत है, अपने भगत की रक्षा वास्ते नरसिंह बन गया। बाणी च वचन है ना, भगत हेत नरसिंह भेव। अज नाम जपने वाले ने अरदास की, नाम जपने वाले ने अरदास की, हे श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज, मैंने तू गुरु नानक दसें। मैं जो तेरे दर्शन करा तो मैं गुरु नानक के रूप च करा। सब आखो सतनाम, गुरु दूर नहीं जे, ये भावना की लोड़ है। इन्हों की भावना जे असि इन्होंने अखा नाल वेखांगे तो पत्रे दिसणगे, स्याही दिसूगी, आ मंजी साहब दिसूगी। तो जो अंदरले नैणा ना वेखांगे ना, तो सानू शब्द के गुरु नानक दिसूगा। अनक रूप खिन माहे कुदरत धार दा, जिसनो लाए सच तिसे उधार दा, जिस दे होवे वल वो कदे ना हार दा। हुण अरदास कीती, विष्णु प्रकट हो गया। विष्णु कहण लगे, कबीरा आ जा, बह जा इत्थे, लोइए तू ही आ जा। कबीर संत नूं कहण लगा, महापुरखो तुसी आ जाओ, इत्थे बैठो हुण पंगत च। ते विष्णु भगवान कहण लगे, ए इस पंगत दे विच बैठण दे लायक नहीं, ए नहीं बैठ सकदा। कमालिया तू बह जा, कमालिए तू बह जा, लोइए तू बह जा, ए संत इत्थे बैठण दे लायक नहीं। हैरान हो गया, मैं इहदा पुजारी, इहदा उपाशक, जुलाए दे घर ते आ गया, मैनू कहिंदा है इत्थे बैठण दे लायक नहीं। वह कबीर दे चरणा च टह पिया, कह लगा, कबीरा मैनू तो इउं जापदा जिउं तूं मोर लिया होया। सब आखो सतनाम। कबीर कहण लगा, हां इहदा मुल है, ये सोने चांदी नाल नहीं मिलदा, खर्च कीतिया नहीं मिलदा, कंचन स्यों पाइए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। ये मन दितिया, सतगुरों का बचन आप हुणे पढ़े, मन बेचे सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास। ये मैं लिया मुल मन दे के, मन दे वटे लिया। अब मोहे राम अपना कर जानिया,

इन्हें टेकना नहीं हो, ये गुरुओं के माथा टेक। ऐसे ऐसे महापुरुखों के दर्शन होए, हम समा कीर्तन की समाप्ता भी हो गया। जेड़े कहिंदे 12-12 घंटे फुरने कोई नहीं, साडे घर कौन दे हुंदे सी, बाबा सुरजन सिंह होरी, भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी दे जेल दे साथी, 12-12 घंटे फुरना ही कोई नहीं। जे फुरना कोई नहीं, दुख भी कोई नहीं, को मन मन ते महसूस करना है ना, ते मन गुरु अगे पे है। कहने लगे हुण 86 साल की उम्र है, शरीर ते शरीर है, 2-2.5 घंटे अजे भी अफुर रह जाती है, कल अफुर फुरना कोई नहीं। जे मन चप्पण वाले कहते बाणी पढ़ने वेले ये महसूस करो असि गुरु साहब के चरणा च बैठ के बाणी पढ़ रहे हैं, गुरु साहब नूं सुना रहे हैं, तुहाडा मन बाहर नहीं जाऊगा। जपजी साहब पढ़ने वेले पढ़ो, आप सुनोगे तो बाणी के अर्थां नाल मन जोड़ो, तो महसूस करो कि असीं गुरु साहब नूं सुना रहे हैं। जपजी साहब के पाठ च इन्नी बरकत है, जिहड़े करदे ने नितनेम धन भाग, वड्डियां भागां वाले ने, जिहड़े नहीं करदे जपजी साहब जरूर पढ़ो, इन्नी बरकत। जे भाई गोपाल नूं महाराज कहण लगे 6वीं पातशाही भी जपजी साहब का पाठ सुना, इतिहास च लिखा हुआ, उन्हें शुरू किया एक ओंकार सतनाम करता पुरख, मन गुरु अगे रख दिता, गुरु नूं पाठ सुना रहे। जां सो दर के हा इत्थे पहुंचा, ते महाराज के मन च ख्याल आ गया गुरु हरगोबिंद साहब दे, भी जे इन्हें इदां ही पाठ सुना दिता ते इहनूं की देईए अज। ते महाराज अपना आसन चलन लगा, आसन बैठे से ना तख्त, अपना आसन पासे होने लग पा। जां इत्थों तक पहुंचा ना जत पहारा तेज सुनियार, ते तीन हिस्से आसन आप महाराज अपना छड़ चुके से, उन एवं वेख्या सतगुरां वल इस तरह, तो महाराज इन्ने प्रसन्न इन्ने खुश, इहदे मन च ख्याल आ गया, पहले फुरना नहीं आया हुण आ गया, सतगुर खुश बड़े आ, जे कि घोड़ा ही दे देने, जे घोड़ा ही दे देने। महाराज ने जिहड़ा आसन छड्डिया सी मुड़ के फिर उत्थे बैठ गया, जां भोग पिया जनी इनाम ते आया गए मुसकत काल, नानक ते मुख जले केती छुट्टी नाल। ते महाराज कहण लगे भाई गोपाल तू जत बहारा तक पाठ सुनाया, जत बहारा मन टिके विच पाठ होवे ते गुरु सुनदा, जे घोड़ा मंगवा के दे दिता। ते सिखा पुछिया महाराज जी आसन चढ़न लग पे सी गल की सी, ते गुरु हरगोबिंद साहब कहण लगे जे ए सुना दिंदा ना जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल, उसे अवस्था सुना दिंदा ना पाठ, ते मेरे मन च ख्याल आया सी भी होर की देना, तख्त ते बिठाल के नमस्कार कर देवांगे भी हुण तू गुरु होयो। ये जपजी साहब दे पाठ दी बरकत आ, मन बेचे सतगुर के पास, जिस सेवक के कार जरास, सेवा करत होए नेह कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। ते अखीर दे महाराज कहिंदे अपनी कृपा जिस आप करे, ये तो आप कृपा करे, ये दाता भी उसे मिल सकती हैं, सब आखो सातन ये तो आप मेहर करे, संगत भी उसे मिलती है, ये तो मेहर करे, अपनी कृपा जस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, ऐसा वचन। आओ इन तुकां सारे पढ़ो, कोई रचना खाली ना रवे, फिर कीर्तन की आप समाप्ति करना।

राग बिलावल महला पंजवां धूप दे घर अठवां। मैं ना ही प्रभ सब किछ तेरा, आई एम नथिंग ओ गॉड एवरीथिंग इज योर्स। ईग है निर्गुण उग है सरगुण, केल करत विच स्वामी मेरा। In this world, you are the absolute, formless Lord. In the world hereafter, you are the related Lord of form. You play it both ways. Nagar mein aap, bahar pun aapan, prab mere ko sagal basera. You exist within the city and beyond it as well. Oh my God, you are everywhere. Aape hi rajan, आपे ही राया, कह कह ठाकुर कह कह चेरा। यू योर सेल्फ आर द किंग एंड यू योर सेल्फ आर द सब्जेक्ट। इन वन प्लेस यू आर द लॉर्ड एंड मास्टर एंड इन अनदर प्लेस यू आर द डिसाइपल। काको दुराओ कास्यों बलबंचा, जह जह पेखो तह तह नेरा। फ्रॉम होम शुड आई हाइड, whom should I try to deceive? Wherever I look, I see you near at hand. Saad murat gur petyo nanak, mil sagar bund nahi anheera. O Nanak, I have met with Guru, the embodiment of holy saints. Like the drop of water merges into the ocean, it cannot be distinguished as separate again. Main nahi prab sab kuch tera. The Shabad is composed in Rag Emily Bilawal. It's a combination of Rag Yaman and Rag Bilawal. And the Taal is Panjital Di Swari, 15 beats.

सतगियो गुरु रामदास आमता पुरवरा गुरु रामदास आमता पुरवरा जहां मान अपनी में सिद्ध को सब।

गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी दा आनंद माणिया है। असि आप जी दा ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करदे हां कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चियां नाल गलबात पंजाबी विच करदे हो तां आप धन्नता जो हो। जे कुछ कसर है तां अज तो इस पासे खास ध्यान दियो। बच्चियां पास पंजाबी विच गलबात करन दा समां केवल घर विच ही है, स्कूल विच, दोस्तां विच, घर दे नौकरां चाकरां नाल तां समां उन्हां नूं मिल ही नहीं सकदा। जरा सोचो, जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकनगे तां गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना तां इक पासे रिहा, उह गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकनगे? गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध किवें जोड़नगे? अपना जन्म किवें सफल कर सकनगे? हो सकदा है आप जी ने इस पासे कदी ध्यान ना दिता होवे। असीं तां उस दाते दा सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हां। जे कुछ उन्ताई है तां ध्यान दियो ते ओ पूरी करो। आप जितनियां वध तो वध जवानां बच्चियां नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी तां सिखी दा मुढ अथवा फर्स्ट स्टेप है, सिखी दा धुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही तां कहा सी कि जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असी तां अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हां। जदों गुरु नानक देव जी दा प्रकाश होया तां मुगल राज दा समां सी, हिंदी जनता कमजोर ते निटार हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम घातक वातावरण नूं पाब कीता ते बाणी विच फरमाया, घर घर मियां सबना जिया बोली अवर तुम्हारी। ए हिंदी जनता नूं हलूणा सी कि तुसी अपना धर्म ईमान छड के मलेच्छां दियां मर्यादा अपना के घर घर मियां बने हुए हो ते अपनी बोली भी त्याग दिती है। सो गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो, केवल अपना घर ही नहीं बल्कि अपने होर सज्जना मित्रां नूं भी इह सुनेहा दे के गुरु दियां खुशियां प्राप्त करो।

आप मोहे नाच नो ना आवे, मेरा मन मंदरिया ना बजावे। ये पावन शब्द सरवण कीता है। आओ एक जो के ज्ञानी ज्ञान सिंह अलमस साहब जी दी बहुत ही सुंदर रचना जो आप जी ने पंथ विच बहुत ही गायन कीती है, जो उन्हां दी सब तो पहली हरमन प्यारी जिथे भी कीर्तन करदे सन वह रचना संगत विच जरूर सुनाउंदे सन, ते बड़ी कठिन है। आप जी ओदी लिखतकारी ते बंदिश दी बनावट आओ अड़ाना बहार दी बंदिश है श्रवण करनी कि किस तरह धूम परी जगत में तुमरी। ए आम ने किते भी गाई पहली बारी जा किते किते इस बंदिश असा ने गाई है, तो ध्यान देना ए दी रचना पहला आप श्रवण करो बोल जो बड़े औखे ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की शिफत की है, ध्यान देना ब्रिज भाषा की ते संस्कृत की चीज है, ध्यान देना। धूम परी जगत में तुमरी महाबली भीम कंप्यो थर हर गदा त्याग चक्रत पयो डंका बजयो रणजीत पे जब ही घना नाना नाना कर शब्द प्रगट पयो। इस उन्होंने कंपोजिशन बनिया है, ध्यान देना। इस चीज इन्नी औखी पढ़न औखी है पर इस उन्होंने बंदिश का स्वरूप दिता है, बड़ा आनंददायक चीज है, ध्यान श्रवण करना। धूम परी जगत में तुमरी महाबली भीम कंप्यो थर हरे गदा त्याग चक्रत पयो डंका बजयो रणजीत पे जब ही घना नाना नाना कर शब्द प्रगट पयो कंप्यो तरणी तर कंप्यो तरणी तर धरती कंबगी कंप्यो तरणी तर थारा रारा रारा कर इंद्रपुरी धूम परी जगत में तुमरी। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी आनंदपुर विच जय जयकार हो रही है, सारे पासे तुम पै गई ते इंद्र दा दरबार ते वड्डे वड्डे भीम जिहड़े द्वापर युग दे विच बड़े बड़े बली सन वह भी कंब गए। गदा तार वड्डे वड्डे भीम वर्गे अर्जुन वर्गे सारे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की शिफत सलाहन देख के उपरों धरती कंबण लग पी आकाश कंबण लग पिया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की इन्नी चढ़त है। तो अगला पहरा बड़ा सुंदर है, ध्यान देना। तीर पातशाह दी किस तरह चलते ने शाना नाना नाना नाना शनक शोम कार शाना नाना नाना नाना शनक शोम कार छड़त तीर कलगी तर शाना नाना नाना नाना शनक शोम कार छड़त तीर कलगी तर सरा रारा सर के जावत तीर सरा रारा सर के जावत तीर छतियां चीर दुष्ट सबन के तरफ तरफ निकसे प्राण धागे रघुबीर महावीर रण तीर की गिरत पगरी धूम परी जगत में तुमरी। तीसरा पैरा बड़ा सुंदर है, ध्यान देना। चक्र चलत खंड खंड रुंड मुंड कर खंडा खड़ग तुपक तबर महा जोध दुष्ट दमन करे। चक्र न्यांग सिंह धमाले ते चक्र पाउंदे हन, ते जदों रण मैदान च लोड पैंदी है शास्त्रां दी ते जदों ओ आखरी शास्त्र धमाले तो ला के ते चक्र मार के सिर ला दिंदे सन। चक्र चलत खंड खंड चक्र चल रहे ने, चक्र चलत खंड खंड रुंड मुंड कर खंडा खड़ग तुपक तबर महा जुद्ध दुष्ट दमन करे। गंधर्व अलमस्त के प्रभु की जग धूम परी डरत पई शिवपुरी पेख आनंदपुरी। ब्रह्मपुरी शिवपुरी इंद्रपुरी सारिया देवत्या दी पुरियां हैरान हो गईयां ते डरन लग पईयां आनंदपुरी नूं देख के। ते ओ ए रचना बड़े आनंद दे नाल प्यार दे नाल साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उस्तत अलमस्त साहब जी दी रचना।

जी गुरु जी बड़े मर्दे मर्द खुदा थे, बड़े आवदो जाहदो पार सा थे, गनी थे नबी थे, बड़े मुकदा थे गाजी थे, दलावर थे वो खैरे शफा थे, करवाने की मर्ज की वो आले दवा थे, देखने के गुरु गोविंद सिंह थे लेकिन जाहरे खुदा थे। तन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जाहरे खुदा, ना सरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह, एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, हक रा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे विच सारे गुण सन। विद्वान ने बड़ा सुंदर लिखा है, नैन तो नशीले, सतगुरु पातशाह जी दे नैन तो नशीले मसतीले दो जादू परे, नैन तो नशीले मसतीले दो जादू परे, तनक निहार सब सुरत पलात है, तनक मात्र तनक निहार सब सुरत पलात है, पलकन के तीर करे दैंतन फकीर शाह, रंकन पे दया कर तख्त बिठात है, पलकन के तीर करे दैंतन फकीर शाह, रंकन पे दया कर तख्त बिठात है, एक हाथ माला और दूसरे पे तेग शुभ है, एक हाथ माला और दूसरे पे तेग शुभ, भक्ति और वीरता की गर्दन चुकात है, फतेह चाड़े आंगन और लक्ष्मी दबाए पग, गोबिंद मरगिंद गुर जीते नहीं जात है। धन गुरु गोबिंद साहब मरगिंद की तरह शेर की तरह सतगुरु पातशाह जी कदी भी रण मैदान विच हारे नहीं है, सतगुरु पातशाह हमेशा जित होई। तो सतसंगत जी औरंगजेब दा ऐलान होया कि मेरे कन्ना विच इन्हां सिखां दी ढोलकी ते चिमटे दी आवाज, ते ये जिहड़े सतसरीकाल दे जकारे छड़दे ने इन्हां नूं जरा चेतावनी कर दिओ, अपने सिपाहियां नूं कह दिता कि दस दिओ कि मेरे कन्ना विच ये ढोलकी चिमटे की आवाज ना पवे, मेरे कन्ना विच ये जिहड़े जकारे छड़दे ने सतसरीकाल दे इन्हां दी आवाज ना पवे। तो कुछ मसंदा ने आके सतगुरु पातशाह चरणा ते बेनती की, महाराज बड़ी डर वाली गल है, बड़ा एक अनोखा चैलेंज औरंगजेब का होया है, सतगुर आप लड़ाई झगड़े विचों की लैना है, तो कृपा करो कि आप एक भोरा पुट लईए, आप जी नूं असीं मशवरा देंदे हां। सारे कट्ठे होके मशवरा देण लगे सतगुरु पातशाह जी, ध्यान देना, सारे कट्ठे होके मशवरा देण लगे, कहिंदे सतगुरु पातशाह जी गरीब नवाज जी ये कृपा करो कि आप एक भोरा पुट लईए, उस भोरे विच बैठ के आप आस्ता आस्ता हौली हौली पाठ करा करांगे, आस्ता आस्ता बाणी पढ़ लिया करांगे, ते हौली हौली ढोलकी वजाया करांगे, ते उत्थे जकारे छड़ लिया करांगे भोरे विच ही बैठ के, ते आपां की लैणा है लड़ाई झगड़े चो। ते सतगुरु पातशाह जी हस पे, कहिंदे ने तुसां ते ए मन विच ठान लई है, मन विच विचार कर लई है, पर सतगुरु पातशाह कहिंदे मेरे मन विच जो फुरना है वह भी जरा शरवण करो। सतगुरु पातशाह कहिंदे उन्हें यह ऐलान कर दिता है कि मेरे कन्ना विच ढोलकी की आवाज ना पवे, नगारा मर दो। सतगुरु पातशाह कहिंदे नगारे ते चोट मारो, नगारे ते चोटा वजन, ते सिंह चढ़दी कला विच जकारे छड़न। ते सतगुरु पातशाह कहिंदे तुसीं भोरे की गल करदे हो, असीं कहिंदे हां खालसे का जिहड़ा निशान है उच्ची पहाड़ी ते चुल्ले, दूरों दूरों पता लगे कि आनंदपुर साहब का यह लोहगढ़ का किला है, ये आनंदपुर साहब की पावन धरती है, गुरु कलगीधर पातशाह विराजमान हैं। तो साध संगत जी सतगुरु पातशाह कहिंदे गुरसिखो, तो सतगुरु पातशाह कहिंदे आ बोल नगारे ते वजने चाहिए ने, ये जिहड़े बोल है धमाकेदार जोरदार वजनदार शक्तिशाली, ये जदों वजणगे नगारे ते देखो फिर उहदे कन्नां विच जदों गूंजा पैणगे तां पता लगेगा। तो सत श्री गुरु कलगीधर पातशाह जी इन्ने अणख, सतगुरु पातशाह जी इन्नी जुरत, इन्नी शक्तिशाली वीरता दे पुंज सतगुरु पातशाह गुरु कलगीधर पातशाह जी तो उचारण कर रहे ने तराना सत्यान देना। दागड़ दी धर्म दिगतांग दागड़ दी दिम धरना, दागड़ दी दे दे ताल कागड़ दी कुम करना, दागड़ दी दे दे ताल कागड़ दी कुम करना, बागड़ दी बरिकते बांग तागड़ दी तोम तोम तरना, तदर दानी दानी तुम दानी तदर तुम धिरना। अखीर ते सतगुरु पातशाह कहिंदे धीम ते धरना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਿੱਤਰ ਵੀਣਾ ਤੇ ਸਤਾਰ ਦੇ ਬੋਲ।

क्योंकि अमृत वेला है। तो अमृत वेले जाके पहला काम ये करना है कि कार्य स्नान सेवन करो। स्नान भी हो गया, सिमरन भी कर लिया,

चले ले मरदाने तू साडे बस्तर पर असी वेई नदी विच इशनान कर मरदाने ने बस्तर पकड़े हजूर वेई नदी विच प्रवेश करदे हन चुब्बी मारदे हन पर पैरी साध संगत बाहर नहीं निकले आखो श्री बाबे ने ऐसी चुप्पी मारी मर्दाना बड़ा चिर उड़ीकदा रहा पातशाह हुण बाहर आउंदे हन हुण पानी विचों बाहर निकलदे पर हजूर निकले मर्दाना नदी दे कंडे ते कदे इधर भज्जा जांदा है बाबा किधर गए हो कदे इधर भज्जा दिन चढ़ गया अजे भी बाबा बाहर गया प्यारी सास संगत बेबे नानकी नू जाके लोकां ने धन गुरु नानक पातशाह जी दे प्यार वाले ने जाके कहा बेबे तेरे वीर ने वेई नदी विच चुब्बी मारी है बाहर नहीं आया प्रेमी तो अखां विचों पानी बहा रहे जिन्हां दे अंदर गुरु नानक दा प्यार सी उन्हां दे अखां विचों तो प्यार दे आंसू जा रहे हैं पर जो लोग नुक्ताचीन सन नास्तिक सन उन्होंने कहा गुरु नानक डूब गए आखो श्री दौल खान हिसाब किताब करना सी मोदी खाने का मोदी खाना गरीबा नु लुटा दिता है इस भाई जराम नु भी बड़ी उदासी पर बेबे नानकी ने कहा तुसी उदास ना हो नानकी तलवंडी तो नाल लेके आया सा नानक नो मैं ते कालू ने कहा सी जयराम इसनो किसी कम लाओ मोदी खाना ले दिता और आज पता नहीं की होया बेबे ने कहा नहीं तुसी उदास ना हो मेरा वीर कदे डूब नहीं सकता ओ तां डूबियां नूं उतारन वास्ते आया किसे महापुरुष ने लिखे चंद्रमा दी मिसाल दित्ती है गुरु दी भी चंद्रमा की करदा है ते गुरु की करदा तो लिखे कालू चंद दिया नूर भरे चन्ना चन्नो सौ गुणा वध लिशकारदा है चढ़े चंद ता डोमदा तारिया नू तो ता डुबिया होया नू चंद्रमा चढ़ जाए तारिया दी लो मधम पै जांदी फिर चंद्रमा दुनिया नू रोशनी देंदा है दे मथे ते कालक लगी स्याही अपनी चन तो नहीं लेंदी तू लखां दी स्याही उतारदा है फिर उच्चा वसना अर्श दे किंगरे ते पर नीवियां ते चाती मार तो प्यारी सास संगत सारे सुल्तानपुर च बड़ा प्रोपेगंडा हो रहा आखिरकार हजूर वेई नदी दे विच भी मार के किथे पहुंचे सचखंड पहुंचे अगे नूर ही नूर है सचखंड दे दरवाजे अगे हजूर ने तकिया लखाई मोहम्मद लखाई रामचंद लखाई कृष्ण लखाई गोरख लखाई देवी देवते खड़ोते तो साहबाने थे शब्द उच्चारण कीते है जित दर लख मोहम्मदा लख ब्रह्मा विष्णु महेश लख लख राम वडीरिया लख राही लख शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर तो दर्ज नहीं है
ਔਰ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੀਨ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਐ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਪਾਉਣਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਤੋਂ ਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਾਖੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਰਸਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼

0: नाम है, ए नाम दुनिया के पास, एक ओंकार वाहिगुरु एक है, सत नाम ओदा नाम सत, करता पुरख सारी सृष्टि दा करता, निर्भव ओनु किसे दा पै नहीं, निर्वैर ओनु किसे नाल वैर नहीं, अकाल मूर्त काल तू रहत, अजूनी जूनिय तू भी रहत, स्वयंभंगो दा सुते प्रकाश है, पर ए मिलेगा किस तरह, गुर प्रसाद गुरु दी कृपा। बाबा जी वचन कर दे सन, ए नाम प्राप्त करके हजूर दी समाधि लगे, आवाज आई नानक जी की कर रहे हो, तो हजूर ने प्यार नाल कहा, जप
1: जप
0: वाहिगुरु में जप रहा की।

वीर लक्षण आशा जी दीवान लगा के कीर्तन समाप्ति उस उपरंत अरदास गुरु के हुक्मनामे ए मर्यादा उदास ने बेनती की सी भी आज दी चाह सेवक वालों तो मैं की सेवा कर सकता हाँ तो जो तुसी प्यार दिता है और ये भी गुरु की प्रेरणा से तो उस संसार अज चाह दा लंगर तैयार है और मैं तो भी बेनती की कई प्रेमी कहन लगे भाई जी साडा भी सब पा आखो श्री भाई कई प्रेमी ते नाल उन्होंने कहा भी साडा नाम ना लियो ते असी भी जिना जिना ते गुरु ने मेहर की सेवका नाल हित किया है तो उन्होंने चाह का लंगर तैयार किया है तो हम प्यारी सास संगत सारे प्यार नाल क्योंकि अज आसा दीवार का कीर्तन भी पूरा हो गया तो मैं चाहूंगा अखीरला छंद अज आसा राग विच आसा राग तो आओ अखीरला ये छंद है अज आसा जी दीवार दे कीर्तन का भोग पै रहा है सर्वासा पूर्णी आसा जी दीवार तो ये छंद आपां

माया दिंदा है जिस तरह का उचारदा है। तो इसी तरह भाई साहब दसते हैं कैसे गुरसिख आवत है अनेक, कैसे गुरसर गुरुशरण के अनेक गुरसिख आते हैं। कोई कितों चल के आता है, कोई कितों चल के आता है, जो जो जिस तरह की भावना लेके गुरु महाराज की चरण शरण आता है उसे उस तरह की कामना लेके सतगुरु को जाता है। आओ कोई सुना खाद न जाए।

जीवन जिया, सोख्यु बिसरे अग्न में रखे, गुर प्रसाद को बिरला लखे, सोख्यु बिसरे बिकते काटे, जन्म जन्म का टूटा गांठ है, पूरे तर है बुझाया, अब

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आप जी अपने इस पवित्र शब्द दे विच ये विचार बख्श रहे हैं, जप हो ता एको नामा, अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम जपो, जे नाम नहीं जपते अवर निराफल काम, बाकी सारे काम निराफल और फ्रूटलैस हैं, उन्हां दा कोई भी फल नहीं है जे नाम नहीं जपते। इस करके दो पंक्तियां मैं आप जी दे सामने अर्ज कीतियां हन। एक, नाम बिना नरक कहीं न लेख है। नाम तो बिना इंसान किसे कम दा नहीं है, किसे कम दा नहीं, किसे लेखे च नहीं। और दूसरी, नाम बिना सूना घर बार, नाम तो बिना ए शरीर रूप जो कर है ये बिल्कुल सुन्ना है, और इस दे जो गुण हन इस काया रूपी कर दे, वो नाम नु भुलाउण दे नाल हर बिसर तेरे गुण गले। महाराज जी ने ते बाणी च ए भी आख्या है,

नाम इस देही दे अंदर है, जब यही तेरे ऑर्डर्स नहीं है, डिसिप्लिन दे विच नहीं है और यही अंदरों गली पई है, तो फिर नाम तू किमें प्राप्त करेगा। नंबर वन, देही नु सोध, देही नु काढ़, इस नु डिसिप्लिन दे विच लिया। देही तंग बहुत कर दी, तो बाबा फरीद जी ने पूछा, महाराज आप जी ने की कीता, क्योंकि देही बहुत किस्म दी आवाजा मार दी, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, क्योंकि इस दी आदतां, इस दे टेस्ट्स, इस दे सुभा रस, जेते रस शरीर के तेते लगे दुख, पर बड़े किस्म दे रस हन जिन्हां दे नाल असी अपनी जो देही नूं कमजोर बनाने, इसनु खराब करते जाने हैं। और इसते अगर कोई बंदा मास्टरी नहीं करता तो यह बड़ी आलसी हो जाती है, बड़ी वीक हो जाती है, आलसी हो जाती है, फिर इस तो ज्यादा मेहनत नहीं होती, फिर थक जाती है। कहते हैं इस देही नु सोध, इस दे नाल थोड़ा टफ हो। फरीद साहब आखते हैं

अपने विचार अस्वारी कीजे। कहिंदे हुण तुसी अपने विचारां दे विच खोए पए हो, उन्हां नालों सैपरेट नहीं हो, विचार अते तुसी एक में खोए पए। विचार आंदा है तुसी उस दे विच रल जांदे। पर इत्थे टेक्निक ये दसी जा रही है कि अपने विचार अस्वारी कीजे, तुसी अलग हो जाओ विटनेस करन वाले, अपने आप नूं सेपरेट कर लो, स्पेक्टेटर बन जाओ अते जो विचार है उन्हां दे उत्ते सवार हो जाओ। दैट यू कीप आई ऑन योर एवरी सिंगल थॉट द मिनट इट क्रीप्स इन एंड व्हाट इट डज इनसाइड यू फॉर हाउ लॉन्ग इट स्टेज इनसाइड यू एंड देन हाउ द सेकंड थॉट इज फॉलोड बाय। कहते ट्राई टू सी द होल प्रोसेस ऑफ थॉट्स कमिंग एंड गोइंग। अपने विचार अस्वारी कीजे, स्नान करके चौंकड़ा लगा के एकांत दे विच बैठ जाओ अते फिर अपने अंदर जिस तरह से बाहर कोई तुरिया फिरदा है उसनु देख सकते हैं। ख्याल भी तो अंदर तुरिया ही फिरदा है ना, ख्याल भी अंदर तुरिया ही फिरदा है। जिस तरह अपने मकान च कोई तुरिया फिरदा है असि अलग चेयर ते बैठ के सिर्फ उसनु वाच कर सकते हैं। टेलीविजन दे उत्ते तस्वीरां चल फिर रही हैं, तुर फिर रही हैं, असी अलग चेयर दे उत्ते बैठ जाने हैं ते उसे उन्होंने देखते हैं। इस तरह महसूस करो कि देयर इज अ ड्रामा ऑफ थॉट्स इज गोइंग ऑन एंड यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट, यू आर जस्ट विटनेसिंग। अपने विचार असवारी कीजिए, अपने विचारां दे उत्ते असवारी करो, भाव के उन्होंने इनडिफरेंट होके उन्हां नालों अलग होके जस्ट वाच दैम। सो पहली चीज तुसी की अचीव कीती है कि यू एंड थॉट हैव बिकम टू डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टोटली डिसकनेक्टेड यूअर सेल्फ फ्रॉम द थॉट्स। तुसी अपने आप नूं थॉट्स तो अलग कर ले, अपने विचार असवारी कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता की होएगा कि थॉट्स का ट्रैफिक आ रहा है, तुसी सिर्फ देख रहे हो कि थॉट आ रहा है ना, उस लई बुरा ख्याल बनाना क्योंकि ख्याल बनाओगे तो ख्याल च उलझ जाओगे, ना उस लई चंगा ख्याल बनाना, कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म करनी, थिंकिंग नहीं करनी, जस्ट प्लेनली वाच देम। सिर्फ उन्होंने देखना है। अपने विचार अस्वारी कीजे दा मतलब है कि अलग होके सिर्फ उन्होंने देखो, तुसी कोशिश करके करन भी देखो कल तो सवेर तो, और फिर जदों भी वक्त मिले इस अभ्यास नू करना है। अपने विचार अस्वारी कीजिए।